या मेरे माधव जी सात संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया जूके कासट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किस की तरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन पाऊ करिया।

मन मन सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बाल बाल सद बल जाइया, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमी अपारा। सब त्यावहे सब त्यावहे तुद जी, हर सच्चे सृजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू का

सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा साब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो जिस दी आए वडिया।

राख और धारो धाम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।

छोटा पुत्र बाबा मोहरी संगतां विच बैठा दनियावी विचारां कर रहा सी। सुते सिद्ध ही मुख तो आख दिता बई मैं कदे एक लख रुपया इकट्ठा नहीं वेख्या। संगतां हसन लगिया बई बाबा जी क्यों नहीं वेख्या, तुहाडे घर विच ते किसी चीज की तोट नहीं। बाबा मोहरी जी आखन लगे साडे पिता जी माया नू परवान नहीं करदे, अगर कोई माया देवी जांदा है लोड़बंदा विच संगतां विच बंड दिंदे ने, इसलिए असी ते कदे भी माया इकट्ठी नहीं वेखी। धन

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musia, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट

0: दिन रात हर रोज परमात्मा नाल प्रेम बनिया रहिंदा है।
1: रसना राम रवै सदा भाई,
0: भाई उन्हां दी रसना हमेशा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु ही जपदी है।
1: साचा साध सुआओ,
0: उन्हां दी जिंदगी दा सिर्फ इको स्वार्थ इको मनोरथ है सच्चे परमात्मा दी इबादत ओदा रस लेना।
1: करनी सुन सुन जीवे आ पाई,
0: भाई ओ जीव अपने कन्ना नल वाहिगुरु जी दी सिफत सुन के जींदा है।
1: नेह चल पाया था,
0: आत्मक अवस्था विच ओना ने ओ थां प्राप्त कर ली जेडी चलाए मान नहीं, बाकी हर चीज ने चली जाना है। ओ निश्चल थां ते पहुंचे खा,
1: जिस पर तीत ना आवई पाई,
0: भाई जिस अंदर परमात्मा दी प्रतीत नहीं प्रीत नहीं,
1: सो जी अड़ा जल जाओ।
0: सचमुच ओ हिरदा सड़ जांदा है जिदे अंदर प्रीत नहीं। गुरमुखो आ वैसाख दे महीने च हजूर ने फरमाया, वैसाख धीरन क्यों वाढिया जिन्ना प्रेम विशो, जिन्ना अंदर प्रेम दा विछोड़ा पै जाए परमेश्वर प्रति भावना ही कोई नहीं, ओ अंदर जीड़े सड़ जांदे खान।
1: बहु गुण मेरे साहिब पाई,
0: हे भाई मेरे सह मेरे मालक विच बेअंत

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

पौड़े बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर पर गटाक सुनाया। सतगुर मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू देहत से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर परिये साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े हो गुनगा साधन मारिए।

0: धुआ पूरा तपे का सतगिर धुआ हो काजुगरा थगन का पूरा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आशा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पग्द करनी।

सतगुरु बठों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता।

मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है मनुख ए नहीं है, मनुख दे अंदर जड़ियां यादां चल दियां ने मनुख ओ है। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है ए नहीं है, मनुख दे अंदर जो सोचनी चलती रहती है मनुख ओ है। पर महाराज कहंदे ने ते कोई पढ़दा ही नहीं। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना, कौन सिर दे लेख पढ़दा है। तो मैर्ज करें जिहड़ी विचार दास ने आरंभ कीती हुई है, कोई थोड़े जिहड़े अभ्यासी सज्जन होणगे अपने नेड़े आउंदे ने, उदास दा मतलब की है, उदासन अपने विच बैठना, अपने कोल बैठना, अपने नाल बैठना, अपने नाल बैठना धर्म दी साधना दा पहला कदम है। पर मनुख नूं दूजा चाहिदा, तीजा चाहिदा, चौथा चाहिदा, कौन अपने नाल बैठदा है। हुण कौन अपने नाल बैठेगा? प्रथम बड़ा गहरा सत्संगी होवे, सरोता बड़ा गहरा होवे, शब्द सुने ते शब्द तीर दी तरह लगे, इन्ना गहरा सरोता होवे, इतनी गहराई नाल थोड़े ही लोग सुन दे। ये भी मैं अर्ज करा, मैं उस दिन अर्ज कीती सी सुरत दे अर्थ तिन ने शब्द दी चाल दे मुताबिक। सुरत शब्द वैसे बनया है सरवन तो सरोते तो, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, इत सुरत दे चाहे सुनदा पै, पर इनू सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी जे सुनदा पै। सुरत आ गई है तो सुरत जुड़ जाएगी, हुण सुरत दे अर्थ ध्यान, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, इन अर्थ ने है। तो पहला तो सुरत है, इनू ही उपनिषदां दे ऋषि जी कहंदे ने सुरतवा धर्मंग विजाना थी। धर्म दा पहला कदम, धर्म दी प्राप्ति सुनन नाल आउंदी है, वेखण नाल नहीं। सुनिए उत्ते चार पौड़ियां ने गुरु नानक देव जी, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। कीर्तन सुनन जा रहे हैं जी, मैं पाठ सुनन जा रहे हैं, गल्ला ही ने कौन सुन दे। अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगई। ऐ सुनना होंदा है। तो हुण मैं अर्ज करा बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, या फिर इनू अपनी अकल तो चोट लग जाए। इतनी अकल महान होवे कि संसार दा सब कुछ छोटा हो जाए। जैसे कल मैं अर्ज कीती सी, गालिब कहिंदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब बच्चियां दा खेल है, मेरा दिल नहीं लगदा, मेरे सामने सब कुछ कुछ नहीं, ये सब कुछ है। जिवें पंजाबी च कहिंदे ने ये जग मिठा, अगला कहन डिठा, ये बड़ी मोटी अकल दी पहचान है। चलो मैं दो नुक्ते थोड़े सामने रखा। पहला, मुगल सम्राट जिसने भारत देश मुगलिया सल्तनत दी बुनियाद रखी, बाबर। बड़ा जाबर सी, जालम सी, गुरु नानक ने ते उसके मुंह देते कह दिता सी तू बाबर नहीं है, जाबर है। पाप की जंजले काबलों धाया, जोरी मंगे दान वेला। हिम्मत है धन गुरु नानक देव जी महाराज की। बाबर कहिंदा है रोजो नो बहारो मैं व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। कहिंदा है खा ले पी ले रंग मान ले, जगत दिच नित नवा रस नित नवा रंग जद मौजूद है तो निराश होण दी की लोड़ है, उदास होण दी की लोड़ क्यों होई है। बाबर ये मोटी अकल दी पहचान है। जिन्हां जिन्हां कोल मोटी अकल आउंदी ओह इही कुछ कहिंदे ने, इह जग मिठा

समा है नहीं सही, इस वास्ते अंदाजन आख्या जा सकता है करोड़ा अरबा साल तक, भावें साल नहीं सन, समा नहीं सी, इन अंदाजन कही है करोड़ा साल तक धुंध ही धुंध से, धुंध ही धुंध, अंधेरा ही अंधेरा से धुंध करके। एक दिन जोर दा धमाका होया, आवाज होई, शब्द होया, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। उस कवाओ तो उस आवाज तो लखां जिंदगी दे दरिया चल पे, लखां ही जिंदगी दे दरिया। एक मिनट इसनों मैं दोहरावा, वो आवाज की सी, उन्हों कलगीधर पातशाह कहते ने, वो आवाज ओहंकार सी, ओहंकार आग कथनी अनाद, ये अनादि कथनी है, ये ब्रह्मंड दी पहली आवाज है, ये पहले तो पहला शब्द है कि ओहंकार। कबीर भी ऐसा कहते हैं बावन अखरी दे, ओहंकार आदम है जाना, लिखे अर मेठे ताए न माना, ओहंकार इतना नहीं तुसी लिख दे उते मिटा देवा। कबीर कहते ओहंकार आदि शब्द है और उस तो जगत आया है, मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है, शब्द तो संसार आया है, तो शब्द संसार दे च मौजूद है, साढ़े अंदर भी मौजूद है, सब कुछ आया जो शब्द तो है, व्यापक है शब्द। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद, वो नाद घट घट दे च वज रहा है, उन्हों अनाहद नाद कहते हैं। दो तरह का नाद होंदा है, दो तरह की आवाज होंदी, आहत अनाहत। आहत कहते हैं चोट नो, संस्कृत दे चोट नो कहते हैं, इन्हें मैनु आहत पहुंचाई है, इन्हें मैनु चोट पहुंचाई है। आहत शब्द जो दो चीजों के टकराव तो पैदा होंदा है, जिमें दो हथा नाल ही ताली वजदी है एक नाल नहीं। आवाज जो साढ़े कन सुनते हैं, ये आहत शब्द है टकराव तो पैदा होंदा है, ये हवा दोगे तो हारमोनियम बजेगा, उंज नहीं, पवन के टकराव तो, हाथ थाप दोगे तो तबला वजेगा, उंज नहीं, लोहे नाल लोहा टकराए, पत्थर नाल पत्थर टकराए, पित्तल नाल पित्तल टकराए, पित्तल सोने नाल टकराए, सोना चांदी नाल टकराए, टकराव तो जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है उहनूं कहिंदे ने आहत शब्द। पवन दरख्तां नाल टकराए, पानी पत्थरां नाल टकराए, उस टकराव तो जिहड़ी धुन पैदा होंदी है, आवाज पैदा होंदी है, उहनूं कहिंदे ने आहत शब्द। अनाहत शब्द जो टकराव तो नहीं सीधा प्रकाश तो आया है, परमात्मा तो आया है, अनाहद नाद परमात्मा दी आवाज है, परमात्मा दिखाई बाद विच देंदा है, सुनाई पहले देंदा है, यह भी मैं अर्ज करता हूं। इस वास्ते कहिंदे ने सुतवा धर्मंग विजानाती, परमात्मा दी यात्रा भी सुन के ही शुरू होवेगी, उंज नहीं। उपनिषदों के ऋषि इंज कहते हैं सुरतुआ धर्मंग विजानाती, चार पौड़िया ने सुनिए दिया, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। शरीर नो भुख लगी है, एक एक भोजन दी बुरकी अंदर जाएगी, भुख बाहर निकलेगी, मन विच पेचे नहीं है, पाप है संताप है, गुरु दा शब्द जैसे मन विच जाएगा, संताप पाप बाहर निकलण। सुनिए दुख पाप का नास, लाजमी ना सुन गए, पर मन दे शब्द तां प्रवेश करेगा जे मन सुने, नहीं सुनदा तो शब्द मन तक नहीं पहुंचेगा, ना फिर पाप धुलण गए ना दुख मिटण गए। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। वो जो अनाहद नाद है उन्हों कबीर कहते ने ओहंकार है, उन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ओहंकार है, उन्हों गुरु नानक देव जी महाराज कहते ओहंकार।

कम से कम 80% ते लगन हो गई शरीर दी प्रदर्शनी करनी शरीर दी नुमाइश करनी नक्शे कदम ते बाकी दुनिया भी चल पी है एशिया भी चल पे रन्ना होइया बोधिया पुरख होए सयाद ए पहले पातशाह जी दे बोले सयाद फारसी दा लफ्ज है पुरुष शिकारी ने देखना चाहते तो इस तरह का फैशपना देखना चाहते ये तो शिकारी ने ते स्त्री इतनी चंचल और नुमाइश करना चाहती है सील संजम सुच भन्ने कोई शील नहीं रहा सील संजम सुच भन्ने खाना घाज अघाज सरम गई घर अपने पत उठ चली नाल नानक सच्चा एक है अवर न सच्चा शर्म हया ते पता नहीं कित्थे चली गई हूं घर घर जिन भूत नहीं पैदा हो गए तो और की होगा कली अंदर नानका जिन्ना दावत पुत जनोरा दी जनोरी जिन भूतां दे पैदा होने का माहौल है भाव माड़े सूक्ष्म ढांचे जेड़े शरीर ने उन्हां दे पैदा होने का माहौल बनिया होया है देवते पैदा हो सकन माहौल नहीं है कोई 2-2.5 हजार साल पुराना इतिहास देखिए भारत का कहिंदे हर दूजे तीजे घर विच देवता हुंदा सी देवी हुंदी सी लोकी कहिंदे सने मनुख नहीं है देवता है इंद्र देवता सी शिवजी देवता सी विष्णु देवता सी जमीन दे ही बंदे सन जिवें अमृतसर वसाया धन गुरु रामदास जी महाराज ने बनारस शिवजी ने वसाई है जमीन दा ही मनुख सी हर दूजे तीजे घर विच कोई देवी हुंदी सी देवता हुंदा सी लोकी कहिंदे दे सने मनुख नहीं इहदा दीवा जलिया होया देवता है माहौल इस तरह बदल गई है हुण हर एक अद घर नो छड़ के दूजे तीजे घर दे भूत प्रेत ही ने गुस्ताखी माओ सतगुरु इस तरह कह रहे हुण देवतियां दे दर्शन औखे हो गए भूतां प्रेतां दे दर्शन करने ओ ही जन्म लेंदे फिर संक्षेप दे जो है मैं अर्ज करा लमकावा ना मनुख दी जीवन यात्रा उत्थे समाप्त होवेगी जिथों चली सी जित दुआरे उबरे जिथों उबार होया जिथों असी आया परमात्मा तो आया परमात्मा ते यात्रा समाप्त होवेगी परमात्मा साडा घर है किड़े दरवाजे तो आया शब्द दे दरवाजे तो आया उत्पत परलो शब्दे होवे शब्दे ही फिर उपत होए क्योंकि कीता पसाओ एको कवाओ एक कवाओ तो सारा पसारा होया एक शब्द तो सारा पसारा होया शब्द दरवाजा है हुण बड़े ध्यान नाल सुनना जो प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है वही शब्द दे रूप दे गुरु है जो शब्द दे रूप दे गुरु है वही प्रकाश दे रूप दे परमात्मा है नानक सो दे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुरु नाही दे फिर दो नाम क्यों ने दो नाम इस वास्ते ने एक दर है एक घर है पर दर ऐसा जो घर दे नाल जुड़े होया है दर तो लगना है ते घर दे च प्रवेश करना है शब्द दा जप करना है ते शब्द ने प्रकाश कर देना है बस इन्नी ही गल है सुते मनुख नु किस तरह जगाओगे आवाज नाल जगाओगे ना एक मनुख सुता पे है कुछ खड़ाक करोगे ना आवाज करोगे ता जागेगा ना ता उहदी नींद टुटेगी सुते मन नु किस तरह जगाओगे सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागा वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप वाहेगुरु नु सुनाण वास्ते नहीं है अपने आप नु जगाण वास्ते ए बारीकी हुण मैं थोड़े सामने रखदे हां पूरा सुत्ता होया मन पत्थर है पूरा जागया होया मन परमात्मा है पत्थर दा भविष्य है परमात्मा होना पत्थर नु प्रकृति बनस्पति च ले आई पशुआं च ले आई मनुखां च ले आई इत्थे तक प्रकृति ले आई मनुख नु प्रकृति ने खुला छोड़ दिता स्वतंत्र है तेरी मर्जी है सच बोल तेरी मर्जी है झूठ बोल तेरी मर्जी अखां बंद करके चल तेरी मर्जी अखां खोल के चल कर्म करण दी स्वतंत्रता है लेकिन फल दी स्वतंत्रता नहीं है जैसे मैं मकई बोदे हां ते फिर मैनू ख्याल आए मैनू ते कणक चाहीदी सी एवें गलती हो गई मकई बीज बैठा अच्छा हुण मैं अरदास करा परमात्मा मेरे कोल गलती हो गई है भुल हो गई है तू कणक पैदा कर दे नहीं कणक तां पैदा

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.